वाणी कशा माता कशा पिता कशा भाई कशा श्रीमती कशा छोरा कसो धन सम्पत्ति के लानु छैन नारायण छोरा।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कालिचक साहब सुनखरी शिवसारा सुधा में की नारी कर चढ़ी भारी विपत्ति ले पति चे ऊंचाई बिनति कर चिंता पिटर ले गुरु देवता राजा और पुन भला मन सका निदान खाली हर बन कन कहीं ज्योति समान देवी के ही सौगर मन देव चंगा कर मुझे द्वारी का हर्षित मुलाका नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन बाला का ओ जने बाला का ओ जगमग करने मन चित हरने।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: थैलू सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल थैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पदक प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 मे 28 तारिक ज्येष्ठ 14 गते बिहीबार द्वादशी तिथि अब स्तुति गरौं।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजब भौतिक जगत में नहरदा नारी ले प्रगति पथ को।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंखका पाला भूषित करौ मालस्ती माला दरौ देवौ दरौ तिस्मशान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे।

नारायण आई उछिंदा हुई रात दिवस हप्ता महीना बनी थाई हुना ने काम गर्दा बेला बीते को पनी नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका घोर से गरुण दाना बहारू नागमा रावण नासिका संचल भाई घुमाने।

0: मई जुन व्यवहार काची जाती है ये के काती नाशियो
1: साजन वेद समस्ता दाजो भाई मानो नमस्कारायो स्वर्ण वज कविता प्रसन्न मनले संक्षेपी भारत भयो।